ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आशिकी फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना कुमार शानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा मदन लाल ने और संगीत से सजाया गुलशन कुमार ने।

0: अहीर कृष्णा और हिमेश रेशमिया की आवाज़ में अभी आपने सुना आशिक बनाया आपने फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में अभी आपने सुना। और अपन फिल्म के इस गीत को लिखा सईद कादरी ने, संगीत से सजाया प्रीतम ने।

कृष्णा और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में अभी आपने सुना चक दे इंडिया फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जयदीप ने और संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला व आखिरी गीत फिल्म देवदास से, जिसे लिखा है नुसरत बद्र ने, संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने, आवाज़ें हैं उदित नारायण और कविता सुब्रमण्यम की।

0: व्यस्त जीवन में कुछ भी नहीं नहीं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हमेशा तुमको चाहा और चाहा चाहा चाहा
1: चाहा चाहा चाहा चाहा चाहा चाहा

देवदास फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
3: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
3: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IDRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
3: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
4: दादी जी।
5: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
4: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
5: हाँ पूछो।
4: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
5: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
4: अच्छा।
5: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
4: अच्छा।
5: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
5: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
4: मंगल पांडे।
5: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
5: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: বড় বড় মহাপুরুষেরা এখানে জন্ম নিয়েছে। আজকে এই দেশ গোলাম, আমরা প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি এই ভারতবর্ষকে আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে আলাদা করে
1: তুলবো।
2: दादीजी, लड़ाई में कौन कौन थे?
3: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
4: बड़े बहादुर थे ये।
3: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
4: वो कहाँ के रहने वाले थे?
3: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
4: अच्छा।
3: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
3: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
4: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
3: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
4: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
3: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
3: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
3: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
5: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
4: दादी, फिर क्या हुआ?
3: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
5: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
3: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
4: फिर क्या हुआ दादी?
3: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: उसके बाद क्या हुआ?
3: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
1: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे हीरो ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
1: नहीं। हमें फांसी के तख्त पर झूलना
6: पड़े।
3: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है।

0: जो रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
1: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
5: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
6: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: अरेस्ट करो!
5: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
6: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भई, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं।
10: तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
10: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
11: माँ
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
11: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
10: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
11: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
11: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
11: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
11: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
11: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
10: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
12: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
13: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
12: लड़की हट।
9: माँ?
12: ये चाकू देख रही है ना,
13: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
9: अरे
13: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
9: माँ? क्या हुआ? ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
12: ए चोर मत बचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: और मेरी माँ को छोड़ दो।
12: ये चाकू देख रही है ना,
9: छोड़ दो। मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
10: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
13: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
10: अरे मेरे बात मत छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
12: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
13: सुनो इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
10: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा
9: हेलो।
14: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा पापा
14: हाँ बोलो,
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
14: कौन घुसा है?
9: माँ को बहुत मार रहे हैं।
14: अच्छा तुम घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
9: देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
9: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
15: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
16: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया एक बच्चे।
10: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
16: देखो ना सभी जान
10: बहादुर है मेरी बच्ची।
15: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
17: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
18: FM 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा लगभग 84,000 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जैसलमेर से सेना और बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाचना क्षेत्र के हिंगोला गांव निवासी मुश्ताक अली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था। वो पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए सेना और बीएसएफ की गतिविधियों के फोटो और वीडियो सीमा पार भेज रहा था। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी को आज सुबह जयपुर लाया गया है, जहां अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न जिलों में शोभा यात्राओं और रैलियों के आयोजन हो रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दी घाटी के युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर उदयपुर में आयोजित समारोह किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने तत्कालीन इतिहासकारों के नैरेटिव का खंडन करते हुए तथ्यों के साथ बताया कि प्रताप के पराक्रम और युद्ध नीति के सामने मुगल सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने और छिपने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 1 से 15 मई तक स्वगणना और 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए। ये व्यापक अभियान राज्य के 41 जिलों और 10 नगर निगम क्षेत्रों में 1,34,000 से अधिक ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें 1,40,000 प्रगणकों, 23,000 पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस चरण में मोबाइल ऐप के जरिए मकानों, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई, जिसे सीधे केंद्र को भेजा गया है। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में मगरमच्छों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। पाली जिले की जवाई और देसूरी क्षेत्र के बांधों में 350 से अधिक मगरमच्छ मौजूद हैं, जो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख रहे हैं। जिला वन अधिकारी प्रशांत कस्तूरी ने बताया कि मगरमच्छों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ पानी, पर्याप्त आहार और शांत किनारों की आवश्यकता होती है। जवाई बांध में इनकी लगातार बढ़ती संख्या इस बात का सकारात्मक संकेत है कि यहाँ का वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह स्वस्थ और इनके अनुकूल है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 28 जून रविवार को बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है।

0: घूमल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी प्रीति भाटिया।
1: और मैं आरती।
0: तो हम दोनों सखियों की तरफ से आप सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। और आरती, उम्मीद है कि इस दोपहर में हमारी बहनें अपने तमाम काम काज से कुछ समय का छोटा सा ब्रेक लेके हमारे साथ समय गुजारने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, अपने दिल की भावनाओं को जिस रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं उस रूप में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ी होंगी।
1: जरूर। और हमारा ये जो कार्यक्रम है मुमल, इसके द्वारा हम अपने सखियों को बहुत सी जानकारी देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं उनके साथ और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। इसीलिए शायद हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमारी सभी सखियों को बहुत ही पसंद है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को वो बराबर सुनती होंगी और इसमें बताई गई जानकारी जो भी होती है उसका उन्हें पूरा फायदा भी मिलता हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि बातों के साथ अगर कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिल जाए, हम भी देखते हैं ना कि जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, चाहे हमें कितनी भी आसपास की खबर हो, लेकिन अक्सर जब हम किसी से सकारात्मक रूप में बात करते हैं तो कुछ नया ज़रूर सुनते हैं, जानते हैं, कुछ काम की बात,
1: नई जानकारियाँ बिल्कुल शेयर होती हैं। लोग आपस में कई तरीके की बातें करते हैं तो कुछ अच्छी बातों के में हाँ पता चलता है। ये तो बात आपने एकदम सही कही।
0: और मुझे लगता है कि हमारी बातों की जो वैल्यू है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर वो मुद्दे जो सीधे तौर पे दो या तीन बात करने वाले लोगों से ना जुड़े हो और वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जिनका हमसे कोई ताल्लुकात ना हो, जिनका हम पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, हम उनसे कहीं अफेक्टेड ना होते हो, तो वहाँ महज समय की बर्बादी होता है।
1: सही बात है।
0: और आज हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसे काम की बातें अपनी बहनों के साथ साझा करें कि जब वो किसी और सखी, रिश्तेदार, बहन या किसी बच्चे से भी बात करे तो कुछ और अच्छा, कुछ काम क्या ज़रूर बता पाए।
1: सही कहा आपने। और हम महिलाएं जो हैं ये हम अपने न सिर्फ अपने घर की बल्कि हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है इसको मजबूत करने के लिए बहुत काम करती हैं। और आज देखिए कि न सिर्फ अपना घर संभालती हैं बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। और खासकर कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ ये जो उनकी समस्या उन्हें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि यौन उत्पीड़न है, मानसिक प्रताड़ना है, तो कई समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो कार्यस्थल है उससे हमारी स्थिति सम्मानजनक होनी चाहिए और उसकी हमारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा थी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घर से बाहर जब कोई महिला निकलती है ना तो अपने आप में वो बहुत बड़ी जंग वहीं जीत जाती है। क्योंकि हर किसी की ये केवल आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, कई बार हम खुद चाहते हैं कि अगर हमने अच्छी तालीम ली है, हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम अपना सर्कल बनाना चाहते हैं, हमें अच्छा अच्छा महसूस होता है
1: खड़ा होने के लिए।
0: बिल्कुल। तो परिस्थितियाँ भी कई बार ऐसी होती हैं कि हमें घर से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। अब जो महिला घर से बाहर निकल के काम करती है, अक्सर आप देखिए कि उसी के रिश्तेदार, उसी के आस पड़ोस के लोग पपटियाँ करेंगे उसके ऊपर। और ऐसे में जिस कार्यस्थल पर हम जा रहे हैं अगर वहाँ पर भी कोई, चाहे पुरुष हो, सहकर्मी हो, या किसी भी रूप में वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के भी लोग हों, या इन बिटवीन भी अगर हमें कोई समस्या रहती है और हम अपने कार्यस्थल पर जहाँ पर हम 8 से 10 घंटे बिता रहे हैं वहाँ अगर हम मेंटली सेफ नहीं हैं, फिजिकली सेफ नहीं हैं, तो चाहे उस महिला की गलती हो या ना हो, अंत में दोषारोपण भी उसी के ऊपर आता है और वो टूट जाती है ना, वो हार जाती है।
1: भाई आज महिलाएं इतनी दक्ष होकर के भी अपनी दक्षता को पूरा बता नहीं पाती, इसका मुख्य कारण भी शायद यही होता है क्योंकि उनको सही ढंग से अगर वातावरण नहीं मिले
0: हाँ
1: तो वो उस हिसाब से काम कर ही नहीं पाए
0: नहीं पाएंगे।
1: देखिए कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है कि उनको काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ऐसा होते हैं कि भाई आज पढ़ लिख के तैयार है, दूर जाना चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने पाँव पर खड़े हों। तो ऐसे जो लोग हैं जो

0: सिर्फ अपने पांव पर खड़े होने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो चल गया, अगर कहीं वातावरण सही नहीं लगा उन्होंने
1: क्विट
0: काम
1: कर
0: छोड़
1: देंगे।
0: दिया तो
1: हाँ
0: भी चल गया। लेकिन जो बेचारे ऐसे हैं कि जिनका घर पूरी तरीके से उनके ऊपर ही निर्भर है, कि कई महिलाएं होती हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर वो बेचारी अगर अपना काम छोड़ दे तो उनके लिए तो एक दिन भी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो
1: सही है।
0: इस स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ जो भी उनका नियोक्ता है वो महिलाओं के लिए उचित प्रबंधन करे। और उचित प्रबंधन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे उनके काम करने की जो का जो जगह है वो साफ सुथरी पर्याप्त जगह होनी चाहिए उनको बैठने के लिए, उनको काम करने के लिए, वहाँ पे रोशनी हवा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ महिलाओं के लिए अलग से जो बाथरूम वगैरह है वो भी होने चाहिए, और सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, चाहे किसी भी समय महिला काम करे। देखिए कई बार रात वाले काम आधी
1: नाइट
0: रात के,
1: शिफ्ट,
0: हाँ नाइट शिफ्ट के काम होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दिन के काम होते हैं, तो उस समय फिर हम जब काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह पाते कि भाई हम नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। हम तो देखते हैं
1: क्योंकि
0: अभी
1: वहां
0: देखिए
1: पे तो
0: बीच
1: बहुत
0: में
1: बड़ा
0: भी,
1: मुद्दा बन जाता है आरती, कि अगर आप घर से बाहर निकले, आप इक्वेलिटी की बात करती हैं, तो
0: हाँ,
1: आपको उस
0: तब तो
1: इक्वेलिटी
0: आपको
1: में
0: करना
1: कहीं
0: ही
1: ना
0: चाहिए।
1: कहीं
0: हाँ, वो भी
1: आपको,
0: सामने से जो नियोक्ता
1: हाँ
0: है वो भी ये कहता है कि भाई आप जब काम करना चाहते हैं और आप बराबरी की बात करते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति अक्सर हो जाती है महिलाओं के सामने कि भाई उन्हें हर हाल में जाना पड़ता है, और वो जो स्थिति है

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो आइए बहनों, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक मीठा सा गीत।

0: तो प्यारी बहनों, इस मीठे से गीत को सुनने और गुनगुनाने के बाद हम बात कर रहे थे कार्यस्थल पर हमारी सुरक्षा के बारे में। तो आप जानती होंगी कि कई ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो कई ऐसे एक्ट बने हुए, नियम कायदे बने हुए हैं जिनके अनुसार अगर कहीं पर इतने प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनमें एक आंतरिक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जो ये बात मेक श्योर करे, कन्फर्म करे कि किसी महिला के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर महिला मौखिक या लिखित रूप से कोई शिकायत दर्ज करवाती है तो नियमानुसार उसके ऊपर उचित कार्यवाही करनी ज़रूरी होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं बहनों कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी भी तरह से प्रेशर को बेयर करें। हमें प्रेशराइज होने की ज़रूरत है ही नहीं योजनाओं के अनुसार और नियमों के अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको जब छुए या आपके साथ में कोई गलत एक्सप्रेशन आपको देता है सिर्फ उसी समय आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको देख करके कोई व्यक्ति टोंट मार रहा है या फिर कोई अलग तरह की इशारे कर रहा है, उसका जेस्चर डिफरेंट हो रहा है या फिर आपको भद्दे तरीके से वो वल्गर अश्लील भाषा में कुछ कहने के बजाय सिर्फ वो आँखों से इशारा कर रहा है, कोई आपको लगातार घूर रहा है, आपके आसपास कोई बार बार आ रहा है, आपको नहीं छू रहा लेकिन इस तरह से उसके इंटेंशन जो हैं वो प्योर नहीं है, या कोई आपको फॉलो कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, एक महिला को ना अर्थी बहुत पहले से समझ में आ जाता है कि कौन है जो उसके लिए गलत दृष्टि रख रहा है।
1: महिलाओं में सिक्स सेंस होता है।
0: हाँ,
1: तो हम महिलाओं को इस बारे में समझ में आ जाता है। और इसके लिए देखिए, सरकार ने भी अब एक अधिनियम बना दिया है जो 2013 का अधिनियम है और पॉश एक्ट का नाम है। इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले हर संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति
0: कंप्लेंट कमेटी है।
1: और महिला जिसके साथ कोई भी इस तरीके की हरकत हुई, जैसे कि अभी प्रीति ने बताया, तो ऐसी अगर कोई भी घटना हुई तो महिलाएं घटना से 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत कर सकती है और जांच जो है वो 90 दिन के अंदर पूरी होनी जरूरी है। तो आंतरिक शिकायत समिति गठन की जाती है और ये सब काम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ ऐसी कोई आंतरिक शिकायत समिति नहीं है, कम ही लोग काम कर रहे हैं, तो भी आप अपनी जो भी समस्या है उसको आप इसके जो अधिनियम है इसके तहत आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन शिकायत करने की भी
0: बिल्कुल प्रावधान है,
1: जैसे कि सी बॉक्स करके एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोर्टल संचालित किया गया है जहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की महिलाएं गोपनीय तरीके से अपनी शिकायत जो है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकती है। तो किसी को भी अगर अपने कार्यस्थल पर कोई भी तरीके की समस्या है तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करानी है।
0: बिल्कुल, तो बातें काफ़ी हमने कर ली हैं आज अपनी सखियों से, जिनसे भी कि गीत सुना और गुनगुनाया। तो हमारे पिटाई और खजाने में से एक नया मोती निकालते हैं और गुनगुना

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा

mulți că să putu ce se mai dar de pe se cum mai baia.

0: तो बहुत मीठा संगीत हमने सुना, लेकिन हम तो भाई जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें तो ये गर्मी और लू, ये आंधियाँ, ये सब देखनी ही पड़ेगी।
1: और खासकर ये जो मई जून का जो महीना है, ये इतनी गर्मी और ताप का है कि यहाँ पर रहना ही
0: मुश्किल हो जाता है।
1: लेकिन ऐसी जगह पे भी देखिए हमको सरवाइव करना है
0: और कर ही रहे हैं।
1: हाँ, और हम तो देखिए अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन सोचिए कि बॉर्डर पे जो सिपाही भी खड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको दिन के समय काम करना पड़ता है, चाहे खेत हो चाहे घरों में जो काम करते हैं, उनको काफी लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और कई बार तो हमें भी अपने काम पर जाने के लिए भरी दोपहर में भी बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो खतरा इस समय रहता है वो लू लगने का।
0: बिल्कुल, पर कई छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे आप देखिए कि हमें हमेशा कहा जाता है कि आप अपना सर ढक करके रखें, चाहे आप टोपी पहन रहे हैं, महिलाएं किसी दुपट्टे से या सूती कपड़े से अपना सर ढक के रख रही है, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को तो जब भी हम कंधे पे लेने, जितने बच्चे होते हैं न्यूली बोर्न बेबी,
1: उनको तो कपड़े
0: ढकके ही रखते हैं। उसका कारण यही होता है कि धूप सीधी उन पर ना आए। और थोड़े बड़े होने पर भी अगर हम नोटिस करें तो जो सर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर गर्मी चढ़ जाती है, लू लग जाती है सर पर, तो वो ऑल ऑफ सडन हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से भी बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
1: सर्दी में भी कहते हैं कि सीधा ठंडा पानी सर पर नहीं जाना।
0: हाँ,
1: वैसे सीधी जब धूप सर पर पड़ती है तो उसका भी इफेक्ट है वो बहुत खराब होता है।
0: बिल्कुल,
1: सबसे पहले तो अपने सर को ही बचाना है।
0: बचाना।
1: अच्छा, उसमें भी प्रीति कई लोग ऐसा करते हैं कि काले रंग के डार्क कलर के कपड़े जो है उससे अपना सिर ढकते या मुंह ढकते। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि गर्मी के समय कपड़े हमेशा हल्के कलर और जहाँ तक हो सके सफेद रंग सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जो है वो हाँ वो ताप को एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि काला रंग जो है वो ताप को अवशोषित कर लेता है और उसकी वजह से और ज्यादा ताप हमको मिलता है।
0: काला, गहरा नीला, ये रंग हमें
1: ऐसे रंग से हमें बचना चाहिए, बल्कि हल्के रंग के कपड़े या सफेद कपड़े से अपना सिर मुंह ढककर बाहर निकले तो हम सेफ रहेंगे।
0: कोशिश करें कि 12 से 3 वाला जो समय होता है उस समय अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज आप उस समय घर से बाहर ना निकलें।
1: और घर से बाहर जब भी निकले तो कुछ ना कुछ लिक्विड जैसे कि छाछ है, लस्सी है या पानी है, ये जरूर पीजिए।
0: बिल्कुल, और छाता भी हम रख सकते हैं, वो एक कोई फैशन नहीं है, बेसिकली वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। आप सन ग्लासेस जरूर पहने, क्योंकि आंख पे भी जब बहुत तेज धूप आती है ना, रोशनी आती है, तो आंखें जलनी शुरू होती है। हाँ, सन ग्लासेस बचाते हैं हमें, वो कोई फैशन का सिंबल नहीं है, वो हमारी जरूरतें हैं। घर से बाहर निकलने से पहले आप कोशिश करें कि हमेशा जिस तरह आप सनस्क्रीन लगा के अपने चेहरे की परवाह करती हैं, चमड़ी की, वैसे ही आपकी बॉडी की भी नीड होती है। अपने बैग में हमेशा पानी की बॉटल रखें ही रखें। छोटी छोटी जो चॉकलेट्स होती हैं, टेंगी फ्लेवर वाली, नींबू संतरे वाले फ्लेवर वाली, जिसे आप चूस सकते हैं, मिश्री के कुछ दाने हमेशा अपने पास रखें। एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी तो हम टिफिन की तरह कैरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आरती हमेशा हमारी बहन है ना भूल जाती है, सबको खिला पिला के ध्यान रखती है लेकिन खुद खाली पेट निकल जाती है। अब आप खाली पेट निकली हैं, गैस भी बन रही है, तापमान भी बहुत तेज है, फिर घर आके उल्टी करेंगे, सर चढ़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो हमेशा खा करके निकले, बेशक भरपेट ना खाएं लेकिन कम से कम आपके पेट में कुछ तो गया हुआ हो। लिक्विड डाइट ज्यादा लें, क्योंकि इस समय खाना हमें कम भाता है हमेशा।
1: और अगर खाना नहीं खाए ना तो हम थोड़े थोड़े जैसे कुछ ऐसे फ्रूट डे की फ्रूट ही ऐसे हैं जिनमें खूब
0: पानी होता है,
1: तरबूज है,
0: खरबूज है,
1: ककड़ी खाइए,
0: आम पना है,
1: आम है, ये सब अगर हम खाते हैं तो इससे भी हम लू,
0: नींबू पानी पीजिए,
1: नींबू पानी तो बहुत ही बढ़िया है,
0: सबसे अच्छी चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजें करके घर में जब भी आप आए तो आते ही मटकी का भी पानी ना पिए, फ्रिज का तो बहुत दूर है, थोड़ा सा 2-4 मिनट रुक जाएं, हाथ मुंह धो लें, थोड़ा रिलैक्स फील करें। घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें ढीले ढाले कपड़े पहने, थोड़े से सुकून वाले कपड़े पहने, बहुत तंग सी जो बच्चे पहनते हैं ना टाइट टाइट जीन्स पहन लेंगे,
1: बच्चों को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाए भाई, हमको लगे कि भाई हमारे कंफर्टेबल नहीं तो बच्चों को कैसे कंफर्टेबल।
0: हाँ, और पूरी बाजू के कपड़े पहने ना है तो आप जो साड़ी पहनते हैं उसकी पल्लू से एक तरह से अपने आप को थोड़ा ढक करके रखें, क्योंकि इतनी तीखी धूप है ना, कब आपकी हालत खराब हो जाए आपको पता नहीं चलेगा।
1: और एक बात जरूर कहना चाहूंगी प्रीति की, जो पेय पदार्थ हम बच्चों को देते हैं या खुद भी पीते हैं तो कोशिश ये करें कि जो पैक्ड हैं उनसे बचें, कोई भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड जो
0: शुगर
1: आते हैं वो ना देखिए। बच्चों को जितना नेचुरल आप दे सकते हैं घर पे बना हुआ, जैसे नींबू पानी है, छाछ है, लस्सी है, या फिर आप कोई जूस घर पे निकाल सकते हैं, तो जो भी इजीली आपके लिए संभव हो वो आप बनाएं और बच्चों को भी वही आदत डालें तो उससे फायदा होगा। बाहर के जूस देने से बच्चों को फायदा नहीं होगा।
0: बिल्कुल, वो मजबूरी की तरह है।
1: प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बच्चों की देखिए आदत भी शुरू से अगर हमने ऐसी डाल दी कि भाई बाहर के जो पेय पदार्थ हैं कैसे कैसे रंग उनमें डले होते हैं, उसमें कुछ असर और रंग के सिवा कुछ होता ही नहीं है खास,
0: अट्रैक्टिव दिखते हैं वो सिर्फ हमें,
1: पीते रहते हैं और हम सोचते हैं कि चलो गर्मी है पीने दो, ऐसा नहीं सोचते। पीने के लिए अगर उनको देना है तो आप उनको उनकी बॉटल्स में भर के घर पे बने हुए जो है, देखिए बील का शरबत कितना
0: बहुत अच्छा होता है
1: पेट के लिए गर्मी के मौसम में, कैरी पानी आप बनाइए, नींबू पानी बनाइए,
0: गुलाब का शरबत घर पर बनता है, खस का शरबत भी बहुत आसानी से घर पे बनता है,
1: शरबत बन जाते हैं तो ऐसे घर पर बने हुए
0: ठंडाई जो हम घर पे पीते हैं सबसे अच्छी चीज है।
1: तो ऐसी चीजें हम खुद भी पिए और बच्चों को भी दे, तभी हम लू और साफ साफ से बच सकते हैं।
0: और चलिए गुनगुनाते हैं हम एक और मीठा सा गीत।

ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इसमें बदल जाओगे, तुम इसना मुझे चाहोगे, तुम इसना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार कर

छेड़ी तो है कम से कम।

0: और एक गीत को सुनने गुनगुनाने के बाद हाजिर हूँ वापस से मैं सुनती अपनी सखी आरती के साथ आपसे करने ढेर सारी बातें। तो आपने कभी नोटिस करा है आरती के ऐसा होता है कि कुछ लोग तो है ना बहुत परफेक्टली सारा काम कर लेते हैं, मतलब बहुत कुशल होते हैं, हर चीज़ में दक्ष होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने का शौक रखते हैं। अगर हमारे घर में भी हमारी कोई ऐसी रिलेटिव, कोई बहन, कोई सखी, कोई भाभी आएगी, अगर हम उन्हें कुछ खाने की चीज़ देंगे, वो खा के बोलेंगे अरे बहुत अच्छा है, बता तो तूने कैसे बनाया, मैं बनाऊंगी तो मेरे घर आना मुझे सिखाना। मतलब कुछ लोगों में ना वो सीखने की जो और सीखने की आदत होती है, वो दो बार चीज़ खराब होगी तब भी सीख लेंगे। इवन मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देख करके जो 60+ है लेकिन फिर भी कुछ नया सीखते हैं,
1: बहुत कुछ करते हैं।
0: हाँ, और कहाँ हम लोग कई बार जिंदगी में ऐसे बड़े मायूस निराश होकर बैठे, ठीक है अब यार जितना आता है उतना बहुत है। तो बहनों, जो ये सीखने की क्षमता है वो एक अलग चीज़ है, पर सीखने की इच्छा अलग चीज़ है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती है। मैं कभी नहीं कहती कि हमें सब कुछ आना चाहिए, वो आ भी नहीं सकता, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है ना कि हम कुछ नया सीखें। किसी दिन हम नए तरीके से अगर अपना थोड़ा मेकअप भी कर लेते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है, एक नया सा पर्स ले लेंगे, थोड़े अच्छे फुटवेयर पहन लेंगे, बाल करीने से बना लेंगे, तब भी हमें कितना अच्छा लगेगा। हम तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलने से, कोई नई बेडशीट बिछा देते हैं, अगर घर में ही रूम में ही फर्नीचर की थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, किचन में थोड़े डिब्बों को झाड़ के थोड़ा उनका रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, और चीज़ें कितनी अच्छी लगने लगती हैं।
1: सही कहा आपने, और यही बात होती है कि यही जो है इंसान इससे जो है दक्ष होता है।
0: बिल्कुल,
1: दक्षता का मतलब ही यही होता है कि आप किसी कार्य को बहुत कम संसाधन में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि देखिए शुरू से हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके, जिज्ञासा से, जान करके वो अपनी दक्षता को
0: कोशिश करके,
1: और उसके लिए वो हर कोशिश करते हैं, किससे भी सीखना पड़े उसके पास जाके सीख के भी आते हैं, किसी को बुला के सीखेंगे, पूरी मेहनत करते हैं, और ऐसे लोग ही दक्ष हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें दक्षता पहले से होती है लेकिन फिर भी वो उसका उपयोग नहीं करते, मतलब जो काम उनको अच्छे से आता है लेकिन फिर भी वो उस काम को ढंग से नहीं करते। या कई बार तो ऐसा होता है कि कोई उत्सल कारीगर है किसी चीज़ का लेकिन उस काम को पूरी तरीके से छोड़ देता है।
0: बिल्कुल,
1: और सोचता है कि भाई हम पैसा देकर किसी से भी करा लेंगे और हम इसको आगे ज़्यादा पैसे में कमा लेंगे। इस तरीके की सोच भी लोगों की होती है। तो दक्षता जो है ये किसी भी इंसान की अगर कुशल है कोई चीज़ में तो वो उससे बहुत कुछ कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और इंसान की जो दक्षता है उसको उन्नति के चरम शिखर पर ले जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि देखिए अगर आपको कुछ बनाना आता है, चाहे खाने पीने की चीज़ है, चाहे या कोई भी तरीके का आइटम जैसे आप बना सकते हैं, तो देखिए आज ये हमारे लिए अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है।
0: क्लाउड किचन का
1: कॉन्सेप्ट जो है, क्लाउड किचन है या आजकल टिफिन के काम कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ है,
0: हैंडमेड होममेड फूड का चाहे परसान का आइटम है,
1: घर में कितना अच्छा कमा लेते हैं इससे, ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं, और ऐसे लोग मेहनत भी करते हैं और वास्तव में उनकी जो दक्षता है वो धीरे धीरे इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो लोग अपने सब कुछ आते हैं वो भी सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी जो आ रहा है उसको भी कहते हैं ना कि जंग लग गई जैसे, तो फिर वो उस चीज को भी इतना बढ़िया तरीके से कर नहीं पाते।
0: और पहले ही दिन तो मुझे लगता है आरती किसी भी इंसान का काम बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वही है चरेवेटी चरेवेटी है ना, कि आप चलते रहिए और कोशिश करने से ऐसा क्या है जो हो नहीं सकता,
1: तरह तरह अभ्यास से
0: जरूरती हो तो जान। बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आप अगर किसी चीज पर मेहनत करेंगे, बार बार उसको करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वही जैसे आप कार्य क्षेत्र पर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी आपका जो XYZ आपके ऑफिस का काम है, आपकी कंपनी का काम है, तो उसमें भी अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
0: तो कुल मिलाकर के सार ये है हमारी बात का कि आप वैसे ही ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ करें, बेशक वो प्रॉफिट के हिसाब से ना सोचें, उसे अर्निंग का सोर्स ना माने, लेकिन जब कुछ नया करेंगे, दक्ष हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो खुद को भी फील गुड होगा ही होगा।
1: तो देखिए ये बात जो हम बता रहे हैं अपनी सखियों के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ सखियाँ ऐसी हैं जो बाहर जाके काम करती हैं, तो वो तो देखेंगी कि हमारी दक्षता कितने बढ़े ताकि उनका अर्निंग जो है वो बढ़े। कुछ ऐसे हैं कि चलो बाहर नहीं जा रहे, अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन अपने घर को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से संभालना, उसको इस तरीके से सेट करना कि भाई जो कुछ भी संसाधन आपके पास है उसमें आप अपने घर को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, कितनी चीज़ों को आप वेस्ट नहीं होने देते और जो वेस्ट है उससे बहुत अच्छा कुछ बना लेते हैं। इस तरीके की दक्षता जब हम दिखाते हैं तो देखिए इससे हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं, इससे अर्निंग का भी सुविधा हो जाती है और बहुत कुछ है जो जीवन में हमें मिलता है।
0: बिल्कुल, तो बातें और भी हैं ढेर सारी करने को, पर चलिए सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक और मीठा संगीत।

0: तो बातें तो ढेर सारी हम अपनी बहनों से कर रहे हैं, लेकिन अब एक और बात, अक्सर हमारी जो एड़ियाँ हैं वो फट जाती है। सर्दी में तो फटती है पर गर्मी में भी फटती है। तो ऐसे में जब ना एड़ियाँ में दवाइयाँ फटी हुई हो, उसमें क्रैक्स आ रखे हो, तो बड़ा गंदा सा लगता है। खुद को भी अच्छा महसूस नहीं होता है और कोई और देखे तो भी आरती बहुत ख़राब सा लगता है ना।
1: क्योंकि जब देखिए गर्म हवा जब चलती है ना, तो ये हमारी बॉडी के जो हिस्से हैं उनसे नमी ले जाती है,
0: बिल्कुल
1: और खासकर ये एड़ी और वाले जो हिस्से होते हैं ये खुले रहते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर इनको मिलता है, तो यहाँ से जब ये नमी ले लेती है तो सूखी सूखी फटी फटी एड़ियाँ हो जाती हैं, तो देखने में भी बहुत ख़राब लगती है। तो जैसे हम अपने शरीर के सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हाथ का देखते हैं, पाँव का देखते हैं, चेहरे का इतना देखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एड़ियों की तरफ हमें अपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एड़ियों की किस तरीके से हमें देखभाल करनी चाहिए कि भाई ये फटे नहीं,
0: हाँ
1: तो सबसे पहले क्या है कि आप जैसे गर्म पानी, गुनगुना पानी आप कीजिए, गुनगुना पानी, और उसमें आप थोड़ी देर अपने पाँव को रखिए ताकि जो भी मैल गंदगी वगैरह
0: नमक
1: है,
0: डाल के रखना है
1: हाँ
0: उसमें, हम थोड़ा
1: वो
0: सा
1: फिर
0: नींबू
1: भी निकल
0: निचोड़
1: जाए।
0: के नमक डाल के, और अगर मीठा
1: कोई
0: सोडा
1: थोड़ा
0: खाने
1: सा
0: वाला है
1: शैम्पू
0: या
1: भी
0: कुछ,
1: डाल सकते हैं आप,
0: शैम्पू भी डाल
1: हाँ
0: सकते हैं उसको, थोड़ी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो आपको हल्के हाथ से सॉफ्ट वाले जो ब्रश है उससे आप थोड़ा सा रब करके डेड स्किन जो है उसको आप रिमूव कर
1: निकाल
0: सकते हैं,
1: सकते हैं। और रोज नहाते वक्त भी अगर हम जो एड़ियाँ साफ करने के लिए जो आता है उससे आप
0: स्क्रबर।
1: थोड़ा स्क्रबर है उससे रगड़िए, तो उससे भी क्या होता है, मेंटेन रहती है और एड़ियाँ जल्दी से फटती
0: और
1: नहीं है।
0: रात को सोते हुए कोशिश करें कि जब हम सो रहे हैं कुछ घंटों के लिए हम रिलैक्स होंगे ना, तो एड़ियों पर भी आप कोई तेल लगा लें, लोशन लगा लें, इवन हील रिपेयर करने के लिए क्रीम आते हैं अलग से, वो इसीलिए आते हैं कि आपकी एड़ी जो है कटी फटी है अगर बिवाइयाँ तो रिपेयर रहे, तो आप वो जो
1: जैतून
0: फुट
1: का
0: क्रीम
1: तेल है,
0: है,
1: नारियल का तेल है, इस
0: हाँ
1: तरीके की क्रीम
0: पेट्रोलियम
1: है,
0: जेली है,
1: हाँ,
0: आप उसे लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा होगा और उसकी देखभाल करना जरूरी भी है।
1: और कई बार तो देखिए मैंने देखा है प्रीति की किसी किसी के अंगुलियां और एड़ियां सब इस तरीके से क्रैक उसमें आ जाता है कि खून तक निकलने लगे
0: निकलने
1: थे,
0: लगता है
1: मतलब ऐसी स्थिति हो जाती
0: क्योंकि
1: है।
0: हमें लगता है कि चेहरे को तो सब देख रहे हैं, पैरों की तरफ नजर नहीं
1: और
0: है,
1: जबकि सबसे पहले कईयों की नजर जो है वो हमारे पाँव की
0: पैरों पर
1: एड़ियों पे,
0: जाती है,
1: कई
0: तो
1: लोगों की नजर चली जाती है,
0: पैर भी साफ
1: हाँ
0: सुथरे होने चाहिए। देखिए जब कोई चीज़ बहुत नीट और क्लीन होती है ना तो वो हमेशा अच्छी लगती है। अब अगर आपके पैर बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं, आप भर भर के अच्छी सी पायल पहन रही हैं, अच्छे महंगे फुटवेयर पहन रही हैं, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, तो इनमें से कोई भी चीज़ आपकी उसको कमी को छिपा
1: नहीं
0: नहीं
1: पाएगी।
0: पाएगी, तो थोड़ी सी केयर करने से चीज़ें ठीक हो जाती है, तो मुझे लगता है हमें थोड़ी केयर कर ही लेनी चाहिए।
1: और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इससे हम बचे भी रहेंगे अगर हम अपनी एड़ियों की इस तरीके से देखभाल करेंगे। तो
0: बिल्कुल, और
1: बातें हमारी होती रहेगी प्रीति,
0: एक
1: बस
0: और छोटी
1: एक
0: सी बात है आरती, वो हम तो
1: अच्छा
0: कहना
1: हाँ
0: भूल गए कि जब हम
1: बिल्कुल
0: एड़ियों की परवाह कर रहे हैं तो खुद की क्यों नहीं, और खुद की परवाह करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि हर दिन कम से कम आधा घंटा तो योग करें, करें योग
1: बिल्कुल,
0: और रहें
1: निरोग।
0: निरोग।
1: और आप सभी को पता है कि योग दिवस भी आ रहा है,
0: 21 जून को,
1: तो ये दिवस भी इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों में एक अवेयरनेस बनी रहे, अपने
0: बिल्कुल
1: शरीर के प्रति रेगुलर व्यायाम करना है, योग करना है, इसकी आदत हमें डालनी
0: आधा
1: है।
0: घंटा तो खुद के लिए निकाल ही सकते हैं
1: बिल्कुल
0: हम।
1: बिल्कुल, तो अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, योग पर ध्यान दीजिए, और हम एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लाए लाए लाए लाए लाए लाए लाए लाए लाए लाए लाए।

0: और बस अब समय आ चुका है जब हम लेंगे आपसे अलविदा। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुखातिब होंगी मैं प्रीति अपनी सुखी आरती के साथ।
1: तो फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक
0: के लिए
1: हमारे साथ
0: और कबूल कीजिए हमारा नमस्कार।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तीन आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ये दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक

0: रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात
2: 3.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA is committed.
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाईयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है।

0: है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्यवाहियों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगा है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल उधानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि

0: मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है?
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

साथी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है, उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: कभी मुस्काना देश पिया के जाना, ओ मुझे देश पिया के जाना।
1: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल रविशंकर का संगीत।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

बदला न बुरा जाता कहाँ है दीवाने सब कुछ यहाँ है सनम बाकी के सारे बताने झूठे है तेरी पसंद कुछ तेरे दिल में फिफ्टी कुछ मेरे दिल में फिफ्टी जमाना है बुरा।

0: है ये पहले मुलाकात, मानो मानो मेरे पास। देखो पहलू से उठ के है ज्ञान अधूरा, जब तक कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे है तेरी पसंद।
1: गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: सही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस बहुत गर्मी है,
2: इसीलिए हमने धरती बोला।
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है,
2: बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं
2: जी,
1: जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोकने के लिए, कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल कर सकते
1: और हैं। घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द, तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
1: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खास तौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, न कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है,
2: उत्साह
1: तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं
2: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
1: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं
2: जी
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: और डायरी लिखने की आदत, बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
1: पूरा मन उड़ेल देते हैं
2: जी,
1: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ
2: जी
1: वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
2: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
1: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: वो भी एक जरिया है क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
2: हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले साड़ियों का संसार में, आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
1: सुनते हैं और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मेरा दिमाग लगा हुआ कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियां फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि इसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी, और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेक्शन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ममता जी जो जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते पे गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया, तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम, तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है जो एकदम जहां पर लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर है वहां हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह रख दी, तो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने फर्श धोने इन सब के काम
0: बचपन में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया,
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
0: हाँ, तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी अभी हैं। आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में, हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था
1: जी।
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।

0: मौसम जीता जाए, मौसम जीता जाए,
1: मौसम जीता जाए, मौसम जीता जाए।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसको देखते हैं, तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना?
0: सही बात है।
1: तो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियां ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहां पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब तो काफी मेहनत लगती है और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जार्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोहानी, इसके अलावा ये काम साड़ी कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के। उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई जाती है साड़ियों।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है और बिंदिया बहुत बारीक होती है और चटक रंग की होती है, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
1: बिल्कुल साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है।

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
5: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
0: बिल्कुल
5: है ना,
0: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती है। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें।
5: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
0: बिल्कुल,
5: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में गुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। वे क्यों नहीं लिखती हैं?
0: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई।
5: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती हैं?
0: लिखना चाहिए
5: बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर हैं, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, विमान में हैं या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में,
2: तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
0: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते हो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। बाकी सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
2: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
0: बहुत
2: है,
0: ईमानदारी से,
2: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता।
0: नहीं।
2: सच को सच की तरह लिखे, झूठ को झूठ लिखे कि ये गलत था,
0: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
2: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई, मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसपे मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
0: उसका
2: तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं कागज पर चमकते हैं तो वो बात निराली होती है, लेकिन न से तो बेहतर है कुछ तो, इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
2: और जी डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
2: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए। फिलहाल गाना सुनना चाहिए।
6: जो तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गई, लिखे जो खत तुझे

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

0: जमाना लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजर बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
1: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मनचाहे गीत की। मनचाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं। और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत
2: करना पड़ेगा।
1: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र हैं जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
2: लेकिन ममता जी एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
1: आपने लिखी कभी?
2: तो ये बात तो बताई जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
1: उजागर राज को
2: राज रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
1: वो अभी भी आती है।
2: हाँ,
1: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी डायरी तोहफे में देने का,
2: तो
1: भी एक अलग मजा है।
2: सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
2: हमें याद है ममता जी जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
1: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
2: क्या बहुत अच्छी बात।
1: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
2: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है। ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है। भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन, डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी प्रोत्साहन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं तो दुख कुरेद जाता है तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर कि प्रोत्साहन वो शक्ति जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए और कलाकार को अपनी कला के लिए और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने के सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि ये गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दे। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
1: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखे, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा कर माना, ये मौसम रंगीन समान खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा कर माना।
1: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी, और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोले बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
2: और मंजरी वर्मा का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान।
1: अथ स्वागतम,
2: शुभ स्वागतम,
1: अथ स्वागतम,
2: शुभ स्वागतम,
1: आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो।

0: बड़ा सहारा हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
2: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
1: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
2: पॉपुलर
1: हुआ करता था उस समय। और जब ऐसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहां इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
2: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
1: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशिया हुए थे।
2: कलर आए थे ब्लैक एंड व्हाइट?
1: ब्लैक एंड व्हाइट।
2: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
1: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं।
2: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना।
1: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
2: अद्भुत,
1: बाप रे। और
2: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत है। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेमानंद साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
1: बिल्कुल।
2: ऐ मेरे प्यारे वतन,
3: ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े

0: मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान।
1: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
2: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
1: बस ये
2: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
2: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
1: जी, जी।
2: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय, अभी तो जी ले कम से कम,
1: रास्ते में अभी तो।
2: मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
1: पढ़ाई मिलती कैसे यार?
2: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
2: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी?
2: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहां बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहां पे। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैं पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
2: हाँ वो है।
1: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
2: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने वाला कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके।

0: हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहां चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है। ऐसे होता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूं कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जा रहे हैं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
1: हाँ, चूंकि
0: आपको।
1: बात अब चल रही है पलों की,
0: हाँ
1: तो एक गाना तो बन गया,
0: कौन सा है?
1: पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: क्या बात,
1: हाँ,
0: बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैक में फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
0: आइए।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राठी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मिला किस्म का व्यक्ति रहा हूं बचपन से, अब शायद नहीं, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं, ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहूंगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल ले लो यार, क्या है? तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया मेरा, यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाए, पिताजी खुश हो जाए। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने वाले, अब तक की बहुत बड़ी गलती की है लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए, कैसे मना करूं मैं अब। अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था, वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए भी समस्या का कारण हो गया। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा, वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब अरे तुझे यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है। वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देते थे मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहां जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी यहाँ पे, हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए।

0: চোখ দুটো সঙ্গে তঙ্গ ঝেলে জিনে সজাই আমি সুখ দুঃখ সঙ্গ তঙ্গ ঝেলে ওই চুন কর চলে যাই অকেলে কহাঁ জিন্দগি কেসি হ্যায় বহেলি কবি তো হঠায়।
1: বিজু ভাই, আর কেসে আনা হুয়া আপকা মুম্বাই?
2: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेक्टरी में था और किसी बात को लेकर तनातनी हुई आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता। कई बार ऐसा लगता है अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेक्टरी ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेक्टरी का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा कि भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस आके वहां फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूं कि किस्मत बड़ी चीज है, कहां पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम जी कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
2: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं
1: जी।
2: और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बननी, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को अच्छा लगता है।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपेट्री का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
2: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम है, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा। फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जूलियट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था, मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें। तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम। मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपेट्री चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था और उनको बड़ा पसंद आया। तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया। मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे। 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 × 18, 18,000 में इतना इतना इतना, तो मैं वो आंकड़े में चला गया। बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे पता नहीं। अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है। और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां। 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से फिर तनख्वाह होगी 4,000, 12 × 48, मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ

0: छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपीटरी ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहनू प्रीति साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं है काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है।
1: विजय भाई, अभी मौका है और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे।
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, लेकिन फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में तो वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात, जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं, जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आता है कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मानसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूं, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म, मैं दोबारा

0: मौका मिला काम करने का, 12 आना, तो मैंने नसी साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है
1: जी।
0: इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फोन पे ना मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए, लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। हाँ ठीक है,
1: कहा दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: अब मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया। तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार, कि क्या। मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता होगी मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रहा हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, क्या नहीं वे तो थक गई थी काफी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओ सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में, उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आप?
0: हाँ, उनके पास थी और मैंने कर दिया, बैठे रहे बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किए थे उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये?
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उड़ती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा, खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसे कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने देखा यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है जबकि। मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आती हैं और कहती हैं विजय हाय कैसे हो, ये सब करके कि अब मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
1: भोपाल एक्सप्रेस।
0: हाँ ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: और... लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बने?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद क्या गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की फिल्म में खामोशी बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें बढ़िया गाना गाया, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज रहा है, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीजें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देखा हूं, उनमें जितने भी नाम मैं देखा हूं, उनके टाइटल जो है बड़ा ऑफ बीट सी है सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहां पे मैं कुछ कह सकूं।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की है वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते हुए हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने में उसके लिए जा रहा हूँ, इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहा है फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया है? आपने सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगा है लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्ट्री है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग,
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि, जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाएं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
0: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता, आप तो इसकी शूटिंग चल रही है, बेस्ट इज बेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और मेरे को चूंकि बहुत बोझा हो जाता है।
0: शुभकामना देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान
4: Thank you.

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
3: आकाशन जैसा मेरा ये गोल्डन सिटी चैनल संवेंड इस वीक का शुरू 8 बजे शाम के 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम योग वाणी।

युवानी सुनने वाला सगला युवा साथियों ने अन्नपूर्णा रहा घना घना राम राम। दोस्तों खेर हाजिर हो नई बातों के साथ में आप और बातों सिलसिलो शुरू करा। सबसे पहला आप आज के बारे में बात करता तो आ बात आपने बताओ। तो दोस्तों आज आप सबसे पहला बात करता शांत करके मन ने और शरीर ने ऊर्जावान बनाने वास्ते मेडिटेशन ध्यान ये बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़े हैं। तो आपने बतावा कि मेडिटेशन रो महत्व आप जीवन में कितो ज्यादा है और इन मेडिटेशन सु आप जिनने मनोयोग भी कहवे है तो ध्यान भी कहो जावे है। मेडिटेशन या ध्यान विचारों ने शांत करके मन और शरीर ने ऊर्जावान बनाने वास्ते एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिकने तनाव कम करने वास्ते एकाग्रता बढ़ाने वास्ते और मानसिक शांति प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यो गयो है जिनसो कि समग्र जीवन भी गुणवत्ता में भी सुधार आए जावे है। नियमित रूप से मेडिटेशन या ध्यान करण रे कई प्रमुख शारीरिक और मानसिक लाभ हुए है जैसे तनाव और चिंता में कमी होना

0: भावनाओं क्रोध डर और निराशा मात्र नियंत्रण पावन में भी अपारो मदद करे है। शारीरिक स्वास्थ्य नियमित अभ्यासों ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जावे है, इम्यूनिटी मजबूत होवे है और गहरी नींद आवन में भी मदद मिले है। आत्मज्ञान और स्पष्टता, अनसुआ मतलब है कि आपारे विचारा ने स्पष्ट कर सका हा, जिनसु की आपा जीवन में सही निर्णय ले पावा। मेडिटेशन या ध्यान में आपने दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत ही सरल है। इनसु सही तरीके सुखनो और अभ्यास करण वास्ते आपा विभिन्न प्रकार राग विभिन्न प्रकार ध्यान में उपयोग कर सका हा और जिनसु की आपने कई सारा लाभ मिले हैं। ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है जैसे श्वास माथे ध्यान रखनो और शुरुआती स्तर माथे उपयोगी मोबाइल रे वीडियो या एप्स रे स्रोतों से भी आप ध्यान करना सीख सक हाँ। एडमोनिया जावे है कि जब भी आप शुरू करा जब ही शुरुआत हो जावे है। शुरुआती स्तर में से अगर आप कालसू ही मेडिटेशन करना ध्यान करना शुरू कर रहे हो तो इन बात रो ध्यान रखा कि शुरुआती लोगों के वास्ते दिन में दो बार 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना ध्यान करना सबसे अच्छा मानिया जावे है। एक बार सुबह उठकर और दूसरी बार शाम में काम भी करने के बाद में भी आप मेडिटेशन या ध्यान कर सका हाँ। तो दोस्तों आ बात हुई ध्यान करण के बारे में, आगे और आपका बातचीत यही चलती रहते। पहले आप सुनो आसन ले।
1: दोस्तों जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता,
0: दोस्तों अब बात सुन रहा था संदेश और इन संदेश से पहले अब बात कर रहा था ध्यान दे महत्व के बारे में, मेडिटेशन दे महत्व के बारे में। शुरुआती समय में मैम ने बताया कि किन तरह से दिन में दो बार 10 से 15 मिनट आप जीवन के वास्ते अमूल्य समय मौसू निकाल सका हाँ, और ताकि आप अपने आप ने स्वस्थ रख सको। और ध्यान करण से दिमाग में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और रासायनिक बदलाव भी हुए हैं। तनाव पैदा करने वाले हिस्सा ने शांत कर देवे है, याददाश्त और भावनाओं ने नियंत्रित करने वाला हिस्सों ने मजबूत करे है और ध्यान यानी कि फोकस की क्षमता ने और भी ज्यादा बढ़ा देवे है। मेडिटेशन करण से मस्तिष्क में होने वाला प्रमुख बदलाव इन प्रकार से है, तनाव कम होना मेडिटेशन मस्तिष्क मस्तिष्क में कई सारा तनाव होने वाला हिस्सा ने शांत कर देवे है और इनके साथ में याददाश्त और सीखने की क्षमता ने भी बढ़ाए देवे है।

ध्यान सू मस्तिष्क है उन हिस्से में भी आत्म जागरूकता और करुणा सू जुड़ियोड़ा बारे में कई सारा एड़ी बातो था पड़े हैं जिन सू की अपने जीवन में कई सारा बदलाव हो जावे है। तो दोस्तों जितो हो सके अपने भी अपने शरीर ने समय देना चाहिए इन व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय आपने शरीर के वास्ते स्वयं के वास्ते निकालना चाहिए और ध्यान अवश्य करना चाहिए। चाहे भले ही घड़ी देख के सुबह 10 मिनट उठन सुबह उठकर 10 मिनट आपने शरीर न देवा और रात के सोने से पहले 10 से 15 मिनट आपने अगर शरीर न दिया जावे तो ध्यान एकत्रित करके आप कई सारी चीज़ों ने एकत्रित कर सका हाँ आपके शरीर में तनाव की स्थिति ने कम कर सका हाँ एकाग्रता ने बढ़ा सका हाँ कई सारी बातें जो आपने समझ में को नहीं आवे वो सब बातें एक एकाग्रचित ध्यान मग्न मस्तिष्क और सरल आराम से बैठ के उन बातों ने आप सोच सका हाँ और उनको हल भी आप आराम से निकाल सका हाँ। तो दोस्तों जीवन में मेडिटेशन रो कई सारा महत्व है सब महत्व मैं आपने बताया और इन बारे में आगे अपर चर्चा ये चलती रहते पहले आप सुनो आप यारो सो मीठो सो गीत गायो है सीमा मित्रा।

हुआ दोस्तों, आप अखबार सुन रहा था अत्यारो सो मीठो सो गीत और इनकी सुखेला आप बात कर रहा था मेडिटेशन रे में महत्व रे बारे में। और मैं आपको बतायो कि किन तरह से जीवन में ध्यान रो होनो बहुत ही जरूरी है। तो प्रयास करो कि आप अभी आपके जीवन में व्यस्त जीवन में मेडिटेशन में ध्यान में अवश्य ही शामिल करा। और दोस्तों हमें आप बात करा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो आपने बताऊँ कि भारत रे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने कौशल प्रशिक्षण आधुनिक टूलकिट और आसान ऋण लोन प्रदान करने वास्ते उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने वास्ते एक केंद्रीय योजना है। इनमें 18 प्रकार की पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ियोड़ा कारीगरों ने 3 लाख तक रो लोन मात्र 5% रियायती ब्याज दर माथे मिल सके हैं, जिनमें विश्वकर्मा योजना रे तहत। जेड़ो कि आपने योजना रे नाम से ही पतो चल रही है कि विश्वकर्मा योजना है। तो इनमें कारीगरों और शिल्पकारों ने कौशल प्रशिक्षण आधुनिक टूल किट और आसान ऋण लोन प्रदान करने वास्ते उन लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने वास्ते एक केंद्रीय योजना है, जिसको कि 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी है। और इनमें लोगों ने कारीगर लोगों ने 3 लाख तक रो लोन मात्र 5% रियायती ब्याज दर माथे दिए जावे है। योजना के अंतर्गत मिलनाला प्रमुख लाभों और विशेषताओं के बारे में आपने बतावा। तो आर्थिक सहायता और ऋण प्रथम चरण में व्यवसाय शुरू करने वास्ते 1 लाख तक रो लोन प्राप्त कर सके है। दूसरे चरण में व्यवसाय विस्तार वास्ते 2 लाख तक रो अतिरिक्त लोन प्राप्त कर सके हैं। ब्याज दर लोन में ब्याज दर मात्र 5% रियायती सस्ते ब्याज दर माथे बिना कोई भी गारंटर रे आ लोन प्राप्त कर सका। हाँ, कौशल प्रशिक्षण और भत्तों के अंतर से आपने मिल सके है। तो आपने बतावा कि योजना के तहत कारीगरों ने बुनियादी और उन्नत स्तर रो कौशल प्रशिक्षण दिए जावे है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये रो भत्तों भी दिए जावे है। प्रशिक्षण के दौरान ही जिको भी कारीगर इन प्रशिक्षण में प्रशिक्षण लेवन आवे है वो सब ने 500 रुपये रो भत्तो भी दियो जावे है। टूल किट रे प्रोत्साहन भी दियो जावे है। प्रशिक्षण ने सफलतापूर्वक प्राप्त पूरा करने वास्ते आधुनिक उपकरण खरीदने वास्ते 15,000 रुपये रो टूल किट प्रोत्साहन ई वाउचर के रूप में दियो जावे है। डिजिटल लेन देन रो प्रोत्साहन डिजिटल लेन देन ने बढ़ावा देने वास्ते एक प्रत्येक सफल डिजिटल ट्रांजेक्शन और एक प्रति लेन देन दियो जावे है। योजना दे वास्ते पात्रता आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आ लाभ परिवार केवल एक ही सदस्य यानी कि पति पत्नी या अविवाहित बच्चों ने मिल सके है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति ने इन सुपात्र

जो दोस्तों आप बात सुन गया था सीमा मिश्रा की आवाज़ में आप प्यारो सो मीठो सो गीत और रणजीत सो पहला आपको बात कर रहे था पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित उपयोग के बारे में। तो मैं आपने बताया हूँ कि किन तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करनी चाहिए, क्योंकि

एडमोनियो जवे है वैज्ञानिकों ने द्वारा भी अनुमान लगाया कि जिन गति से दुनिया भर में कच्चे तेल रो दोहन हो रहे है अगले 50-60 वर्षों सु में पृथ्वी के नीचे छिपियोड़ो खजानो पूरी तरह से समाप्त हो सके है और प्रकृति के इन बनावों लाखों वर्ष लगोड़े पेट्रोलियम पदार्थों की भी कमी आ गई है। लेकिन अपारे द्वारा कुछ समय में ही इन्होंने दोहन कर दियो गयो है। अगर आज आप यारे सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करता तो आपारी आवन आली अगली पीढ़ी रे गाड़ियाँ केवल खिलौनों और संग्रहालयों में ही दिखाई दे से क्योंकि एडमोनियो जावे है और वैज्ञानिकों द्वारा भी अनुमान लगायो गयो है कि अगले 50-60 वर्षों में ही पृथ्वी के नीचे छुपेड़ो तेल रो खजानो पूरी तरह से समाप्त हो सके है। इन वास्ते दोस्तों आपने पेट्रोलियम पदार्थों रो सीमित उपयोग करना चाहिए। दूसरो कारण आ है कि पर्यावरण और आपारो स्वास्थ्य। आज आप देखा हाँ और सुना भी हाँ कि ग्लोबल वार्मिंग पिघल तो हुआ ग्लेशियर्स बेमौसम बरसात जड़ी आपदाओं आपारे सामने खड़ी हो जावे है। जब एक गाड़ी सड़क मा से चले है तो केवल दूरी तय को नहीं करे बल्कि पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जड़ी जहरीली गैसों भी छोड़े हैं। महानगरों की हवा आज भी सांस लेवन लायक को नहीं बची है। पेट्रोलियम रो असीमित उपयोग आपारे फेफड़ों ने भी कमजोर कर सके हैं। आपने सीमित और समझदारी भरे उपयोग पेट्रोलियम रो करना चाहिए और इनके साथ में अपने व्यक्तिगत वाहनों और जगह सार्वजनिक वाहन परिवहन रो रुख करना चाहिए। कम दूरी वास्ते पैदल चल के साइकिल की संस्कृति ने वापस लाना चाहिए। लाल बत्ती की गाड़ी जैसे समय इंजन बंद करना चाहिए जबकि छोटी सी आदत भी हर साल करोड़ों लीटर रो ईंधन बचा सके है। इनके साथ में आपने बतावा कि आप पेट्रोलियम में विकल्प जहाँ की सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से कदम बढ़ावा ताकि केवल सरकार की जिम्मेदारी ही कोनी है। आपारे द्वारा भी हर एक नागरिक रो कर्तव्य है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों रो सीमित उपयोग करा। इन जगह सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से चलन वाले साधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करा। इनके साथ में ही दोस्तों अपना सोचना चाहिए कि ईंधन की बचत करता तो आप

0: प्रकृति भी हरी भरी पनौड़ी रहते। कई जगह एक बात लिखोड़ी भी रहे है कि ईंधन ने बचाओ, पर्यावरण सजाओ और आवन आड़े कल ने कुछ हाल बनाओ। तो दोस्तों अब बात हुई पेट्रोलियम पदार्थ और सीमित उपयोग रे बारे में। आगे आपका और बात अगर था पहले आप सुनो आसन दे।
1: शहर जानते हैं आप, वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: युवा दोस्तों आप बात सुन रहे हैं संदेश और हमें आप सुनो आप यारो सो मीठो सो गीत।

हेलो दोस्तों, आप आवाज सुन रहे था सीमा मिश्रा की आवाज में। आप यार सुजीत और अंकित से पहला आप आवाज कर रहा था पेट्रोलियम पदार्थ और सीमित उपयोग के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किन तरह से पेट्रोलियम पदार्थ और सीमित उपयोग का साथ तो आप आवन वाली पीढ़ी में भी पेट्रोलियम जड़ो पदार्थ बच सके हैं, नहीं तो 50-60 वर्षों में ही खत्म हो जाए है। तो दोस्तों आ बात हुई पेट्रोलियम पदार्थ और सीमित उपयोग के बारे में और हमें अब बात करना करा जल संरक्षण में युवाओं की भूमिका के बारे में। जल संरक्षण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो न केवल आज रा जागरूक नागरिक है बल्कि भविष्य रे संरक्षक भी कहलाया जावे हैं। युवाओं द्वारा आपकी ऊर्जा तकनीकी ज्ञान नवाचारों के माध्यम से युवा जल संकट ने दूर करने में जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लावण में सक्षम मनिया जावे है। इन वास्ते ही कही जावे है कि जल संरक्षण में युवाओं का योगदान होना बहुत ही जरूरी है। ताकि जल संरक्षण में युवाओं के योगदान का विभिन्न तरीकों से बहुत प्रभावशाली हो सके है। नवाचार और तकनीकी समाधान युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर पानी की बचत के वास्ते कई नई तकनीकों और उपकरण विकसित कर सके हैं। स्मार्ट सिंचाई यानी कि कृषि के वास्ते स्मार्ट सेंसर और

नियंत्रित सिंचाई रो उपयोग कर सका हाँ, ताकि पानी की खपत कम हो सके और सिंचाई भी अच्छे से हो सके। जल रो पुनः चक्रण, अपशिष्ट जल ने अब उपचरित यानी कि साफ करके पुनः उपयोगकरण वास्ते नया तरीका अपना सका हाँ। डिजिटल जागरूकता और सोशल मीडिया आज रे युवा और रे हाथों में सबसे शक्तिशाली हथियार मान्यो जावे है। अभियान चलाने वास्ते युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से जल बचाव का संदेश बहुत ही सटीक तरीके से भेज सके है। कई लाखों लोगों ने तक जल बचाव के वास्ते संदेश भेजा जा सके है। वीडियो और रील्स के माध्यम से भी जल संकट की गंभीरता ने दूर करी जा सके है। जल संकट की गंभीरता और वर्षा रे जल संचयन माथे लघु वीडियो बनाए कर भी जन जागरूकता फैला सके है। सामुदायिक नेतृत्व और जमीनी स्तर माथे कार्य भी युवाओं ने द्वारा करियो जा सके है। युवा जमीनी स्तर माथे सीधे तौर माथे लोगों ने जागरूक और संगठित कर सके है। इन वास्ते ही कह गयो है कि जल संरक्षण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सके है। वर्षा जल रे संचयन में भी कई तरह से युवा लोग आपकी भूमिका निभा सके है। भारत में विशेष रूप से राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जिया की पानी की भारी कमी रहे है, युवा लोगों के द्वारा कई सारा ऐसा सिस्टम ने बढ़ावा दियो जा सके है, जिनमें आप महत्वपूर्ण योगदान दे सके है। आपके घरों और सार्वजनिक भवनों में बारिश के पानी ने इकट्ठो करियो जा सके है। गांवों में नदियों ने, तालाबों ने, कुओं, बावड़ियों ने सब ने बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर साफ सफाई करी जा सके है, ताकि बारिश में आने वाले जल अच्छे से संचयन हो सके और तो दोस्तों इन तरह से आप वर्षा रे जल ने संचयन भी कर सका हाँ, साफ भी कर सका हाँ। जागरूक हो के सोशल मीडिया रे द्वारा इन रे संदेशों ने भी पहुंचा सका हाँ। तो आ मान्यो गयो है कि जल संरक्षण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके है। तो दोस्तों आ बात हुई जल संरक्षण में युवाओं की भूमिका के बारे में। आगे आप चर्चा इन्हें चलती रहते, पहले आप सुनो आप प्यारो सो मीठो सो गीत।

युवा दोस्तों, आप बात सुन रहा था सीमा मिश्रा की आवाज में आप्यार सुखी। तो गीत रे साथ में समय हुई क्यों है आपसे विदा लेवन रो, फिर मिलता नई बातों के साथ में। तब तक मौजू करो इंतजार। राम राम।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्ड सिटी चाल है एफएम बैंड 1.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम की 6 बजे से दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। समाचार संध्या का अंक होगा रात 8:45 पर आप सुन सकते हैं न्यूज एट 9 रात 9 बजे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी के समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी के समाचार। शाम 6:30 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

हमारे केंद्र से ऐसे कुछ देर बाद शाम 6:05 तक तो आपने ये राम चरित मानसा प्रति सभी का दैनिक कार्यक्रम बन रहा होगा शाम 6:15 पर। ग्रामीण भाई सुनेंगे अपने कार्यक्रम ग्राम के साथ शाम 7 बजे। सुबह कम संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं रात 8 बजे 9:15 और रात 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी वादन राग मारवा कलाकार हिंदी पंडित हरिप्रसाद चौबीस। समय रहेगा शाम 7:30।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम हुआ रात दस बजे सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्ड से दिखा रहे हैं समय 8:06 पर शाम के 6:05 में आइए सुनते हैं रामचरित मार्ग का।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक

आरे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: सुनी कछु कजुराने कही कछु लखनु बहुरी मुसकाने
1: हसत देखी नख।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस का आकाशवाणी जैसे मेर का ये गोल्ड सिटी शहर है समेंड 108 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 6:15 में आइए आप सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम बदला कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं श्री राम दरबार की गाई इस भक्ति रचना से।

0: नट वर मुरलीधर गोविंद हरे ओ भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे
1: भजो गोविंद हरे भजो गोविंद हरे।
2: कार्यक्रम में इस व्यक्ति रचना से पूर्व आप सुन रहे थे नटराज ईश्वर को और अभी आप सुन रहे हैं शेखर सुमन और चाचा को और इस व्यक्ति रचना के साथ ही आज का हमारा वंदना कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्ड सभी चैनल है मैं एक शाम के 6:28 मिनट होने को है। अब तक इस देर बाद 6:30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 मिनट का समय रहेगा जिले की छुट्टी का और 6:45 मिनट पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी की जयपुर की कृपया हिंदी में प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: भाग हुआ मत वाला झूमे गोकुल का ग्वाला भागे धीरज की बाला देखो छेड़े नंद लाला।
3: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। शाम के 6:27 हुए हैं और अब से बस थोड़ी देर में पहले शाम 6:30 पर सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: TLI है ना,
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से

0: माध्यम से ये राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना से देश भर में लगभग 15 लाख आशार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। योजना के तहत पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कार्मिकों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। साथ ही रोजगार देने वाले नियोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। श्री शर्मा ने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं और सेवाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
1: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्र जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर पानी छोड़े जाने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समस्या का समाधान करने और तुरंत पानी छोड़े जाने का आग्रह किया। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने किसान प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर जातिगत राजनीति नहीं करने की बात कही, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने पर जोर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कोटा प्रवास पर हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर दशहरा मैदान में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक यात्री बस आज तड़के वडोदरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांसवाड़ा के निवासी थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तथा अन्य बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के असर से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि ऐसे इलाके जहां मिट्टी में खारापन बढ़ने का खतरा अधिक है, वहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

0: और यूरिया तथा केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड को अब डिजी लॉकर पर प्राप्त और साझा किया जा सकता है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेशवासियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था से नागरिक डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना जन आधार दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही जन आधार से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए इसके डिजिटल प्रति का उपयोग भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में परिवारों की पहचान के लिए जन आधार अहम दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में एक अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों के जो बीमार नवजात है, स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल निबोन केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड निबोन केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। श्री बागड़ी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उनका जीवन अन्याय और अनैतिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विभिन्न धार्मिक पीठों के साधु संत तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
3: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकते। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर पाली, डूंगरपुर, भरतपुर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में पुष्पांजलि और गौरव गान कार्यक्रम रखे गए। इस उपलक्ष्य में किशनगढ़ में हेलमेट वितरण कर यातायात सुरक्षा का संदेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आज साइबर अपराधियों को पैरासाइट यानी परजीवी कहा। अदालत ने कहा कि मासूम निवेशकों को ठगने वाले इन अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। साइबर अपराध के पीड़ित पूरे देश में फैले हुए हैं और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर

0: साल 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ये पहल की गई है। इस साल की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम पायदान के व्यक्ति को जनहित योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने पर जोर दिया और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संघर्ष को नमन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। अलवर जिले में इन दिनों विकास परियोजनाओं, जल संरक्षण, कृषि जागरूकता और खेल गतिविधियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीते दिनों अलवर आए। उन्होंने अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली बहरोड जिलों से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं, रेलवे से जुड़े कार्यों, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, ई बस संचालन तथा किशनगढ़ बास क्षेत्र में एयर स्ट्रिप और MOR निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पेयजल परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। रामजल सेतु परियोजना, अलवर भरतपुर चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, राणा प्रताप सागर बीसलपुर वाटर लिंक परियोजना तथा रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। अलवर, भिवाड़ी और नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। पर्यटन क्षेत्र में बाबा भर्तृहरि, बाबा मोहन राम, गरबाजी, लालदास महाराज मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा की गई। कांकवाड़ी, कुशालगढ़, अजबगढ़, नीमराणा और तिजारा फोर्ट को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव ने मिनी सचिवालय परिसर में राजीविका महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। बीते दिनों इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका और बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समापन समारोह में भाग लेकर विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। बालिका वर्ग में अलवर की टीम विजेता रही और कोटा की टीम उप विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम विजेता और अलवर की टीम उप विजेता रही। विभिन्न खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर और अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। जिले में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। गंगा दशहरा के अवसर पर राजगढ़ क्षेत्र के मंगलसर बांध पर अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव रवि जैन और जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने इस दौरान सरोवर पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई, जल संचयन और पौधरोपण के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया गया। अलवर जिले के बगड़ राजपूत गाँव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत के लिए केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कृषि गोष्ठी में भाग लेकर किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और परंपरागत खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत की सेहत और मानव स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है। कृषि अधिकारियों से किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने को कहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गुजुकी गांव के किसान महेंद्र कुमार सैनी ने पॉली हाउस, मल्चिंग और वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं से आय बढ़ने की जानकारी दी। वहीं किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अलवर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मथुराधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि देवन रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आखिरी पांच रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो पुगावन रो संकल्प दोहरायो। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव विकास और पर्यावरण ने बचावन बीच संतुलन बनावन माथे जोर तीनो। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख और वन याद करी जिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 19 जून ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY रातेत करीब 2400 करोड़ रुपया री रकम पात्र लोगों ने देवन रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रा दफ्तर सेवा तीर्थ माए रखा जावन वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम रे जरिए आ रकम दी जावेला। लाडला साल अगस्त महीना माए चलाई जी ई योजना रो मकसद नौकरी धंधा रा मौका माए बढ़ोतरी सागे सामाजिक हिफाजत रो दायरो बढ़ावनो है। PMVBRY देश माए करीब 15 लाख जना ने काम धंधो करण माए मदद मिलेला। ई योजना रा तहत पहले दफा शामिल भेवन वाला ने 15,000 रुपया ताई री रकम दो किश्ता माए दी जावे है। इस आगे नौकरी देवन वाला ने हर अतिरिक्त कर्मचारी सारू हर महीना 3,000 रुपया ताई री रकम मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किश्त 20 जून न जारी करी जावेला। पीएम किसान सम्मान निधि री ई किश्त रे जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रुपये बत्ती रकम जमा कराई जावेला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रुपया री 3 किश्ता माए कुल 6,000 रुपया सालाना री मदद दी जावे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर माई लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो जायजो लीनो। श्री शर्मा उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर माई लगाई जा शिविर माई पट्टा सर्टिफिकेट और दिव्यांगजन ने मदद री रकम रा चेक और जरूरी साजो सामान दीना। इस दौरान वह शिविर माई मौजूद लोगों सागे बातचीत कर और विचार पूछा। मुख्यमंत्री जनताओं मारा आरे सारे रा जरूरतमंद लोगों ने शिविरां ताई पुगावन माए मदद करन री अरज कीनी। वे कहो कि जनता रा नुमाइंदा अहलकारा कर्मचारियां और जनता री भागीदारी हुई शिविर सार्थक बनेला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार आखिरी पांत रा हर एक जना ताई जनता रा भलारी योजनावां और सरकारी सेवावां रो फायदो पुगावनो ते कीनो है।
2: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे शहरी क्षेत्र जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
1: पांचना बंधा रो पानी कमांड एरिया री नहरा माए छोड़न री मांग करता था का किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप गांव माए प्रदर्शन कर रहा है। इन बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुलाकात कर पानी छोड़न रे बारा माए वाने कागज सौंपियो। व मुख्यमंत्रियों बातचीत कर

0: समस्या हल करण अर नेहरा माए बे गोई पानी छोट बारी अरजकी नी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ई मामला माए जातिगत सियासत नी करण बाबत कहो है। लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज कोटा पधारिया, मारो कांग्रेस रा कई आला नेता स्वागत कीनो। राहुल गांधी रो भणाई लिखाई हूँ जुड़ी व्यवस्था माए सुधार और परीक्षाओं माए साफ कोई रबारा माए विद्यार्थियों सागे बातचीत करन रो कार्यक्रम है। इन बीचे राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा मेडिकल कॉलेज रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रो दौरो कर वचे भर्ती जापा वाली लुगाइया अरवारा परिवार वाला सागे बातचीत कर वठे इलाज रसुबीतान अबारा माए जानकारी लीनी। बांसवाड़ाऊ गुजरात माए सूरत जा रही एक बस आज तड़के वडोदरा कने हादसा रो शिकार फेंकी। इन कारण 6 जना री मौत वेगी और 27 मुसाफिर जख्मी फेंकिया। जख्मी लोगा ने वडोदरा रा SSG अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। हादसा रा कारण मरण वाला लोग बांसवाड़ा रा रहवासी हा। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। वो दिन रेगिस्तान रा पसारा और सूखारा असर रो सामो करण सारू जाग जगावन रा मकसद मनायो जावे है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम में कहो कि सरकार 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन है उपजाऊ बनाने तय कीनो है। श्री यादव कहो कि मिट्टी में खारोपन बधन री शंका वाला हल्का माए प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो दियो जाऊनु चाहिए। वे विकास और पर्यावरण री हिफाजत बीच संतुलन बनावन री जरूरत माथे जोर दीनो।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: जन आधार कार्ड अब डिजी लॉकर माथे हासिल करियो जा सके है। राज्य सरकार और डिजी लॉकर बीच व्या करार पाछे ओ सुबितो मुहैया कराई चियो है। ये पाछे अब डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट माथे लॉग इन कर जन आधार रो कागज डाउनलोड और सुरक्षित रखियो जा सके है। इस आगे जन आधार जुड़ी नरी नरी सरकारी योजनावां और सेवावां सारू इनरी डिजिटल कॉपी काम ली जा सकेला। ध्यान जोग है कि राज्य में परिवारों री पिछाण सारू जन आधार खास कागज है। प्रदेश में जन्मताई बच्चा ने मर जावन री रेट IMR लगातार कम फैर रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का न्यू मिली जानकारी रे मुजब शिशु मृत्यु दर में एक अंक री कमी दर्ज करी ची है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी आकाशवाणी ने बतायो कि लगातार स्वास्थ्य जांच, टीका लगावन और स्वास्थ्य जुड़िया सुविधा में बढ़ोतरियों बच्चा ने बेहतर देखभाल मिल रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों के जो बीमार नवजात है स्पेशली उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अभी राज्य में 71 स्पेशल निबोन केयर यूनिट्स जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
0: हिम्मत अर खुदरा मान री अमर निशानी महाराणा प्रताप री जयंती अर हल्दी घाटी री लड़ाई माए अकबर रे खिलाफ जीत रा 450 साल पूरा भवन रे मौके आज प्रदेश माए की कार्यक्रम रखी चिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारतीय क्षत्रिय महासंघ री ओर जयपुर माए राखी चिया मान जलसा माए महाराणा प्रताप ने याद करता थका મારા આદર્શામાં થચાલણ બાબત કહ્યો. શ્રી બાગડે કહ્યો કે મહારાણા પ્રતાપની જિંદગી અન્યાય અર અનૈતિકતાઓં લડવારી સીખ દેવે હે. મહારાણા પ્રતાપની જયંતિ રે મોકે ઉદયપુરમાં શોભાયાત્રા નીકાળી છી અને રાષ્ટ્ર ચેતના સંકલ્પ સભા રાખી છી. કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા ન્યારી ન્યારી ધાર્મિક પીઠા રા સાધુ સંત અને મોટી તાદાદમાં લોક સામિલ થયા. એ મોકે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ રા સર સંઘ ચાલક મોહન ભાગવત મહારાણા પ્રતાપની લડાઈને દેશની સ્વતંત્ર ચેતના ખુદરા માન અને સાંસ્કૃતિક અસ્મિતારી હિફાજત રી નિશાની બતાઈ.
3: हल्ली घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की. वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था. और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता. हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे.
0: वीर योद्धा महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके पाली समेत न्यारा न्यारा जिला में फूल चढ़ावन और गौरव गान रा कार्यक्रम राखी चिया. ये मौके सलुम्बर जिला रा चावंड माए महाराणा प्रताप स्मारक स्थल माथे महाराणा प्रताप री मूर्त माथे फूल माला चढ़ाई ची और खास कार्यक्रम राखी चियो. પાલીમાં રાખીચા કાર્યક્રમમાં પશુપાલન અર દેવસ્થાન મંત્રી જોરારામ કુમાવત મહારાણા પ્રતાપની મુહૂર્ત માથે સિરધારા ફૂલ ચઢાયા. વચ્ચે ન્યારી ન્યારી સામાજિક સંસ્થામારી ઓરું જુલૂસ અર રેલી નીકાળી છી. અજમેર જિલ્લાના કિશનગઢમાં સ્કૂટર મોટરસાઇકલ ચલાવવાવાળાને હેલ્મેટ દેર યાતાયાત સુરક્ષારો સંદેશ દીયો છો. ઝુંઝુનુમાં આજ નુઆ અગ્નિવીરાનો માન કરી છો. એ મોકે રાખી જ્યા કાર્યક્રમમાં જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર અરુણ ગર્ગ કહ્યો કે ઝુંઝુનુ જિલ્લો હિંમત અર બહાદુરી સારું ન્યારી ઓળખાણ રાખે હે અર વઠાઉં ફોજમાં ભરતી વેર દેશની સેવા કરણરી રીત રહી હૈ. વે કહ્યો કે એડા જલસા નૌજવાનોને આગે વધવારી સીખ દેવે હૈ. અરે બે મોસમ રાજ્યમાં કઈ ઠોણા લાડલા દિના ભી બિરખાઉં પારો ઉતર્યો હૈ. કઠે કઠે તાપમાન 13 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાઈ કમ થયો. ચોમાસાઉં પહેલી રી બિરખારા અસર અબ આખા રાજ્યમાં લૂરો અસર ખતમ વેક્યો હૈ. મોસમ વિભાગ રે મુજબ કાલ શ્રી ગંગાનગર બીકાનેર હનુમાનગઢ ટોંક બારાં અર કરૌલી સમેત 20 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અર અલવર ભરતપુર અજમેર ડીગ અર જયપુર સમેત 16 જિલ્લામાં બાદળારી ગાજ અર બીજળિયાની ચમક સાથે વરસાદ પડવણ અર જોરદાર બાયરો બાજણરો યલો અલર્ટ જારી કર ચેતવ્યો હૈ. આખિરમાં ખાસ સમાચાર એક ફેર સુન લી રહો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રો 19 જૂન ને પીએમ વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના રા તેત કરીબ 2400 કરોડ રૂપિયા ની પ્રોત્સાહન રાશિ દેવણ રો કાર્યક્રમ. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા આખરી 5 રા હરેક જણા તાઈ જનતા રા ભલારી સરકારી યોજનામાં હર સેવામાં રો ફાયદો પુગાવણ રો સંકલ્પ દોહરાયો. કેન્દ્રીય વન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ વિકાસ અર પર્યાવરણ ને બચાવણ વિચે સંતુલન બનાવણ માથે જોર દીનો. અર મહારાણા પ્રતાપ રી જયંતિ રે મોકે આજ રાજ્યમાં ભાંત ભાંતરા કાર્યક્રમ રાખી છ્યા. ઈસા ગઈ પ્રાદેશિક સમાચાર બુલેટિન પૂરો થયો. નમસ્કાર.
4: આકાશવાણી જેસલમેર કા યે ગોલ્ડ સિટી ચેનલ હે. સમય 101.8 મેગાહર્ટઝ પર શામ કે 7 બજે હે. ગ્રામીણ ભાઈ સુનેંગે અપના કાર્યક્રમ ગ્રામ જગત.

0: राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले हैं ग्रामीण भाई ना केड़ा भाई
1: मनु भाई राम
0: राम मनु भाई राम राम। आज सर्दी गर्मी तो असर थोड़ो कम है शहर में तो काल जो बजे बरसात हुई थी पर बावजूद भी जो बरसात री जो आवश्यकता तो है अपने ये तो पाँच बरसात आया करे और अभी तक गर्मी पड़ से और आप कार्यक्रम माध्यम से सब श्रोताओं ने एक ही अनुरोध है कि भाई ये समय रे में बड़े बुजुर्गों रो खुदरो बच्चों रो और आप पशुधन रो गर्मी से बचाव करे जितो हो सके। और आज प्रताप महाराणा प्रताप जयंती है तो वे सब श्रोताओं ने हार्दिक बधाई क्योंकि महाराणा प्रताप री जो जयंती है आप और राष्ट्र गौरव राष्ट्र स्वाभिमान री सूचक है ये जुड़ विषय है और ये जो है मोरी वीरता आदम ने साहस जो मोर जीवट है जो मतलब हार नहीं मननी जो कसम खाई थी और मरते दम तक और लगातार कितने कष्टों झेलने बाद में भी जो है वो आगे समर्पण कौन करियो और जंगलों में रहो मंजूर करियो एक राजा राज की जिंदगी बताया एक आदमी तो आज आप गर्व सुनो गौरव सुनो ना याद करो जगह जगह ये वास्ते कार्यक्रम हुआ है उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की गई है और मेरे साथ साथ रहे मैं शोभा यात्राएं वगैरह आप और मेवाड़ क्षेत्र में भी निकली हैं उदयपुर में पर आप और दिल से जो आप सबनों सम्मान करना हूँ और आगे भी आप राष्ट्रीय जो अखंडता बनाने वास्ते आप सबनों मतलब जो है यहाँ से प्रेरणा मिले और यह काम आप करना है मेरे साथ साथ में आप आज आप जो ग्रामीण विषय कार्यक्रम है तो खेती किसानी में आज तो खेती किसानी जो है निश्चित रूप से पहले तो यहाँ कहो जाओगे तो भाग्य खेती के भाग्य हो से तो आप खेती लाभ हो जाते आजीविका मिलते लेकिन समय बदल गया है भाग्य मतलब निश्चित रूप से बहुत कुछ निर्भर करे पर आज उन्नत खेती की बात हुई नया तौर तरीका अपनाने की बात हुई अब बहुत सारा अनुसंधान होया है खेती से संबंधित जिसके में उन्नत बीज है उर्वरक है रासायनिक खादों है तो वो एक तरफ से जो है हमारा प्रयोग भी जो है एक अंधाधुंध बढ़ जो है तो पक्षी आप जैविक खेती की भी बात हो रही है तो ये वास्ते एक जून से 30 जून तक वास्ते आप राष्ट्रीय स्तर आप माननीय कृषि मंत्री जी जो शिवराज सिंह जी चौहान है हमारे नेतृत्व में हमारे देखरेख में खेत बचाओ अभियान जो चालू ये दौरान जो किसान भाइयों ने उन्नत बीजों के बारे में जानकारी जैसे नकली जो कीटनाशी या नकली उर्वरक है यहाँ के बारे में जानकारी जा सके जैविक खेती की तरफ आप कौन कर बढ़ सके ये जानकारी आपने मिल रही तो ये समय में आप जागरूक रहो आप आगे बढ़ो और आप जो जिला मुख्यालय में स्थित कृषि कार्यालय है वहाँ से संपर्क करो और वहाँ से जो भी आप आगे आप आए आमदनी बढ़ाने वास्ते जो जो जानकारी ले सकें वो आप ले जाओ और उरे साथ रहो आप मतलब जो है यह भी देखना है कि भाई आज 21 जून आने वाला आज 17 जून है और 21 जून जो है विश्व योग दिवस है और योग से जो जनक है जन्मदाता है आप देश है आप भारत है और भारत रे जो सरकार रे अथक प्रयासों की वजह से जो है विश्व योग दिवस रूप में 21 जून न मान्यता मिली है और सबसे बड़ी बात है कि भाई वह दिन आप जो कार्यक्रम है वह में तो आप बढ़ चढ़ नहीं सोलो पर पूरे वर्ष पर्यंत आप दिनचर्या में आप योग न आप जीवन में उतारो क्योंकि योग जो है एक सिर्फ कोई उत्सव या दिवस को नहीं योग आप शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास प्राचीन विज्ञान है और यह न केवल जो आप बीमारियों से बचाव करे बल्कि शरीर न लचीलो और निरोगी बनावे और ये साथ साथ में आप तनाव कम करे आप और मानसिक शांति बेहतर एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा न प्रदान करे आप और याददाश्त तक न भी मतलब जो है ये तरीके का योग है वो बढ़ा सके तो आप सब हर उम्र के लोगों के वास्ते लाभदायी है विशेष तौर से विद्यार्थियों के वास्ते और बड़ी उम्र के लोगों के वास्ते पर जब आप बीमारियों से ग्रसित हो जाऊँ और उसके बाद में आप योग न याद करो तो बेहतर है कि आप उसमें पहले जो है आप दिनचर्या में योग न उतारो और जिस टाइम आप शरीर लचील होया करे और पहले से निरोग होया करे तो योग जो है हालांकि बीमारी होड़ी बीमारी ठीक कर सके पर योग जो है बीमारी नहीं हुए।

ये तरीके से भी योग क्षमता रखेगा, आप लगातार आप योग करता रहो तो आगे आप बीमारियों को नहीं हो जाए करे। और आप मतलब कई कौन सको तो कई एडी भी कोई बीमारी कौन में देखो योग सो मतलब जो को है ठीक नहीं हुए, पर विशेष रूप से जो है हृदय स्वास्थ्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या सब ना मतलब जो को है योग निवारण चरण में या शुभ वर्तन में पूरा सहयोग करे। तो ये वास्ते आप जो को योग सो आप 21 जून जो को उन तो याद रखो ही रखो, लेकिन उधर साथ रहे मैं आप योग ना जो पहले आप बात करी है कि निरंतर जो को आप दैनिक दिनचर्या रहे आप अपना, और निश्चित रूप से अगर आप अपने समय की कमी हुए तो आप थोड़ा समय भी दे सको, न्यूनतम आप 20 मिनट 30 मिनट से आप शुरुआत करो, और हमेशा जो को है बदल बदल योग रहे जो को प्राणायाम और व्यायाम हो जा करे, तो मैं शू कदे कहो कदे कहो करियो इस तरीके से भी आप योग अपनाए सको। और उधर बाद में आप बात करो तो आप जो को मरुस्थलीय वनस्पति परंपरागत वनस्पति है कैर और सांगरी, ये जो को है खार नो जो को है जीवित रखने वालों वृक्ष है, और ये साथ साथ रहे मैं ये जो को आप कह सकते हैं कि भी जो जीवन है वो मतलब कोई ये मैं बाजार में जो को चीज़ें आ गई उनमें एक्सपायरी या वो जो को अंतिम मतलब तिथि मतलब जो को खराब होनी ये मैं ऐडी कोई चीज़ को नया करे। और अगर आप बात करो तो सांगरी जो को है इतनी स्वाद रहे मैं लजीज हो या करे इन अगर सुखा है और बाद में भी जो को है इन आप असीमित समय वास्ते इन रख सको, और जब ये सब्जियां बने शादियां रहे मैं कोई प्रकार समारोह रहे मैं और घरों रहे मैं, और जब अपने जैसलमेर जो को पर्यटन स्थली है बाहर से जब पर्यटक आवे और यहाँ पर आई जो रेस्तरा है खाने रहा जो को आप मोरा उम्र मोए केर सांगरी एक प्रकार से मतलब जो को रास्ता नहीं पहचान। हाँ अब पहले तो जो को एक मतलब आप मोरा जो जैसलमेर जिलो हो तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से जो को बहुत ही विषम परिस्थिति वालों जिलो हो, तो दूर दराज जो आबादी रो बहुत बहुत कम घनत्व और तो बड़ो खेत क्षेत्र पर लगे साथ साथ में आवागमन ना साधन ना, और आप हरी सब्जियां तो मतलब बात भूल ही जाऊं, तो वो समय रे मैं जो है लोगों के जीवन यापन वास्ते ये तरीके रहा जो प्राचीन सब्जियां होती हैं तो आते हैं, लेकिन आज भी जो ये गुणों के वास्ते ये स्वाद की वजह से जो है ये ना लोग सात समुद्र पार रहा भी विदेशी लोग भी है जो को ये स्वाद सुन आप एक प्रकार से कह सकें कि भाई अभिभूत हो जाओ ये, तो ये ना आप निश्चित रूप से जो है जो ये गुण है वो शहरी क्षेत्र में अगर आप कुछ इस विमुख वगैरह हो रहे हो तो यहाँ पर ये बड़ी गलती है, आप ये गुणा ना पहचानो ये जो है लंबे जो को जीवन रख रहे है वो ना आप समझो, और ये ना आप एक व्यंजन और मैं आप सूची ने मैं रखो तो बढ़िया बात है, और आप और कार्यक्रम जो को है बातचीत रहे साथ साथ में आप लोक संस्कृति रही और भी सर करे, तो आज आप जो है बढ़िया एक लोकगीत भाई लोगों ना सुना।

सतसंगत अमर जड़िए, सतसंगत अमर जड़िए, सतसंगत अमर जड़िए, सतसंगत अमर।

mano, tambe pone arena kusi mano, dar singh rup dariye, sat sangat amar jariye, sat sangat amar jariye, jin ko lab mila sat sang mein उनको खबर पड़ी है सत संगत अमर जड़ी है सत संगत अमर जड़ी है।

हरिय सत संगत अमर जड़िय सत संगत अमर जड़िय जिनको लाभ मिला सत संग में जिनको लाभ मिला सत संग में उनको खबर पड़ी है सत संगत अमर जड़ी है सत संगत

मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत।

वो बढ़िया जन लोग भी सुनियो, बात कर रहा था कि भाई जो है बात जो है भारत सरकार जो कोई प्रशासन को एक योजना चला रही है, जगह में खेत बचाओ अभियान चल रही है। ये वहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई गांव गांव में जाकर के प्रशासन, राजनेता और जिसको भी है, ये एक जिसको प्रगतिशील किसान है, गाँव गाँव जावे और जाए करके जो है किसानों को खेत के बारे में जानकारी दे, खेत में जो है कीटनाशक रूपों का छिड़काव करना है और उसके साथ साथ जो मिट्टी की जांच कॉकर करानी है और जैविक खाद का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, कॉकर करना चाहिए, ये सब प्रकार की जो जानकारी है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही जो बढ़िया बात है और ये नोटिस जो है खेतों किसानों ने काफ़ी प्रकार को जानकारी मिल से और ये साथ साथ एक और चीज़ है कि थार भी जो बच दी थार किसान जो वनस्पति केवल जीवन यापन और साधन को नहीं क्योंकि बल्कि संस्कृति और कला और लोक परंपरा भी नहीं है। खेती केयर जाड़ और समुद्र के जरिए जो परंपरागत वनस्पतियाँ हैं एक खान पान और पोषण का रुख आधार भी है। तो ऐतिहासिक परिस्थिति और संस्कृति की भीड़ है ये जो पत्तियों और चारे रूप में उपयोग किया जाए और खेजड़ी जो कच्ची फलियों है यानी सामग्री किया जाए। केयर एक छोटी सी की और स्वादिष्ट झाड़ीनुमा वनस्पति है। एयर को है फलीदार वनस्पति थार स्थानीय मसालों और औषधि व्यंजनों की उपयोग में भी लाए। मारवाड़ में जो है केयर जो है सांगरी कुमटी यानी जो है मारवाड़ मेवो भी कहो जाए। ऐसे कोई खेजड़ी के पेड़ में लगने वाली फली हुई जिसे सूखा कर पारंपरिक रूप से लंबे समय तक अपने संग्रह कर सके और प्रोटीन टैनिन और खनिज की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाए। कैद जिसको झाड़ी है गर्मियों के मौसम में बिना पानी के गले गुले और ये नमकीन पानी की छाछ में भिगो कर करवाट या भाव दूर कर सके। ये गैर सामग्री जो है सब्जी राजस्थानी पारंपरिक शादी और त्यौहारों में जो विशेष व्यंजन है जो है थार सूखे और विपरीत मौसम में प्राकृतिक रूप से पौष्टिक भोजन भी किया जाए। तो इस प्रकार से आगे भी बड़े बात कर सकते पहले सुनिए बढ़िया है कि लोग भी।

अरे बोले तीतर मोर जी गेरी गेरी झाड़ी अरे बोले तीतर मोर तीन आया जातरी रे चो थोड़ो रे चोर जी तीन आया जातरी रे चो थोड़ो रे चोर हे राम शापीर तारी हे राम शापीर तारी मेरी मैं जो

हे दास करे अरदास करे रे दस गयो कालो नाग जी दास करे अरदास करे दस गयो कालो नाग जी रुणे चरा शाम धनी सुतो वै तो आव जी हे रुणे चरा शाम धनी सुतो वै तो आव।

0: Oggi maro e lo sono di dama pi di
1: मैं आज रिटायर करूँ टाइम पूर्व ही नहीं लगा सकते ठीक राम राम
2: राम राम।

0: So I'm writing an essay on...
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। आप सुन रहे थे राग मारवा। इसी के साथ आज का हमारा शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। हम बैंड इस देहरा 8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे ही आइए सुनते हैं संगीत।

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग आर दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग आर दो आन भान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग आर दो आन भान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड।

0: देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं।
1: अभी आप सुन रहे थे यशुदास को संगीत सुनेगा, तुम संगीत के कार्यक्रम आप तक पहुँच रहा था यशुदास से। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन ऐप पर भी सुन सकते हैं।
2: Going on the flow, mess with us, we throw you off the dough. Both the doors, we smack you, hunk.

इस पोषण जो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सब के चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।

0: सर इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए गाड़ी से।
0: That's the spirit, सर। सपना हो जा

फिल्म संगीत इस कार्यक्रम के अंत में अभी आपने सुना कविता को कृष्णमूर्ति कुमार शानू और साथियों को कवि हम दिल दे चुके सलाम। और इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, समय 1:08 बजे।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोड्डा से विशाल है समैंड 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। रात के 8:30 में आइए तुम पहले सुगम संगीत कार्यक्रम के आरंभ सुनते हैं इस गजल में घनश्याम वासवानी को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस गजल में आप सुन रहे हैं जुनेद अख्तर।

घनश्याम वासवानी की जगह से बोलते था कि आज हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम देखने की कला होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल का बैंड 1:08 दफा रात के 8:45 मिनट होने को है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। रात 9 बजे न्यूज़ इतना ही हमारे दिल्ली के।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों शिखर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: गोदा मिले भारत में सुबह हो सुनहरा कल। नशा दिखाती सहीरा और घर समस्या का भी हल।
4: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रेले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, इनको मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
7: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
5: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
8: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंक

0: रखा था।
1: वेरी गुड। और ये कौन है?
2: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
1: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
2: हाँ।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना अनुप घोषाल को फिल्म थी मासूम। कार्यक्रम में अगला गीत सुना, इससे पहले सुनते ही सुन लीजिए।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

फिल्म संगीत इस कार्यक्रम के अंत में। अभी आपने सुना जगजीत सिंह को फिल्म थी साथ साथ, और इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जैसे मेरे को गोल्डन सिटी शहर में एफएम बैंड 1.8 MHz। रात्रि के 9:30 होने को ऐसे कुछ ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल

0: साथ करना, जो यूजर है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर होते थे, उन प्रोसीजर से जिसे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, इस प्रकार अपने बनाए हुए रिडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद कर रहा, पाकिस्तान अपना खुद कर रहा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे को निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो, आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें तब तक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है, प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं, एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब जो एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क है जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बनाकर के

0: फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है। जॉब के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाया उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई है, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एल&टी हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात करें। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमें बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस, सप्लाई, स्पेयर, उसको पाने में दिक्कत नहीं होती। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड है, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आप मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IIT है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कहीं एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आपको ये बहुत डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो स्किल्स हो या स्किल्स हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से TGS के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? उनके भरोसा, उन्होंने कहा हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसमें अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो हैं और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां पर जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी यूएवी बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन।

0: उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि पांचवी श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग जो हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन तो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस दिन आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशन हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक जितने बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को इंक्रीज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखें कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी आप तो फेल हो गए ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए क्योंकि आपको अगर हम ये हमारे लिए तो आत्मनिर्भरता और भारत के लिए, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग के पैरामीटर्स है जिसके GS4 हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे थे, और वो उस बातें का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है तो दोनों तरीके के है हमारे में तरह तरह के एरियन कंडीशन है। तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भारत के अंदर करते हैं, इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर ले वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAVs को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है कि अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
0: इसके कई सारे आंसर। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेंड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब हुआ हो, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहाँ बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट करता है, सब छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचते हैं यह हमारा देश है, और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में मुझे मारी है और अब मधुमक्खियां जो है निंदा गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आप देखिएगा वो कौन सा है, वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फटाफट कौन सा जनरेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया, 4.5 जनरेशन, फिर 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। तो जब हम भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAVs है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेज है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेटप्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, जूते है, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से

0: बातचीत करता है जो ग्लोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली पीछा होता है कि आप डेनियो खेल गए, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपका आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत कर ली, मैंने कोशिश कर ली, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की और जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पर है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है। ये ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने बोली कैसे हमारी कूटनीति पर फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिससे तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरान नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई भी बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने दें, 30 साल लग गई जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने, जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रॉन्ग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 31% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसलिए कोई ये नहीं कट कवर्नेस करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आने दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि यह हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है ये हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपने जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये

0: यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारी दिल्ली के आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्ड सिटी चैनल है। अमेंड इस विदेश वालों का 8 रात के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के हमारे कलाकार हैं पठान खां पाटिल।

ले गेरा बाजतुरी अमला बेला अपना

ಸ್ವರೂಪ ಭಕ್ತರು ಬಾದಳ ಬರಸಲು ಜನ ಧರಿಯೋರು.

समले घटा स्वरूप बकर बादल बरसले जरा धन धरियो।

0: আছা সরিয়ানার সেগুন আছা রে বাবু।
1: राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पठानखा पार्टी की गायक राजस्थानी लोकगीत। इसके साथ ही आज का हमारा राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं एक फनकार। आज के इस फिल्म संगीत के एक फनकार के कलाकार हैं मन्ना डे।

ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी।

घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पर।

ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी।

घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूत है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर को जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं।

संगीत के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के संगीत की गोल्ड स्टेशन से फ्रीक्वेंसी मीटर एफएम बैंड 1.8 मेगाहर्ट्ज़। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और आइए सुनते हैं मन्ना डे को फिल्म 420 में।

दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।

छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिट।

के एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, के तरह का कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के तरह का कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, जिनके गले के सहारा न बहना। सुनना मगर ये किसी से न कहना, जिनके गले के सहारा न बहना। बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मराठी को एक बार फिर फिल्म है उपकार।

तुझे को मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप विशेष फिल्म संगीत की प्रस्तुति सुन रहे थे। आज के हम एक विशेष फिल्म संगीत की प्रस्तुति में आप सुन रहे थे एक कलाकार मन्ना डे को, और इसके साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्ड सिटी चैनल FM बैंड 1.8 MHz पर रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के
2: साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एरिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों शिखर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
4: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।

इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: by institutions, organizations, and communities in promoting the message of yoga across the country. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated the Netherlands by 95 runs in a Group E match at Headingley in Leeds tonight. In reply, the Netherlands were bowled out for 114 in 17.3 overs, and for India, the Sri Chetan start with a 4-wicket haul, while the Shefali Verma picked up 3 wickets and Nandini Sharma claimed 2. Batting India first posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs, powered by Smriti Mandhana in 74 and Shefali Verma by 55. In cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an inaccessible 2-0 lead. And that's the end of the news bulletin.
1: ആകാശവാണി കേസുകൾ ഗോൾഡ് സിറ്റി ചാനലിൽ സമയം ഈ സൂചിക്കുന്നത് 8:00 इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11:10 में है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल दिन में 11:55 में कल की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, जय हिंद।